आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

हम प्यारे से। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

कुंज दर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूफी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
2: विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
3: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
4: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
5: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बरसों बाद ढूंढने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: दो पड़ोसियों से, झांके न खिड़कियों से।
1: दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: नजर न लगा दीजिए।
1: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
0: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे साई तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती,
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: ये यो यो तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती,

0: बरसों बाद ढूंढने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्कार नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही मस्ती भरा शो जिसका नाम है स्टार मिक्स मस्ती। यस, इसमें हिंदी और भोजपुरी गाने के तड़के लगते हैं। वैसे मुझे इन तड़का लगाने नहीं आता है लेकिन गाने आप सबके एक से बढ़ के एक आते हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले आप मेरे पसंद के गाने इंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करें क्योंकि ये गाना आज मुझे बहुत सुनने का मन कर रहा है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह मैं सरफू भाई सरफराज पटेल जी जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मेरे दोस्त। और मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मंगेश देशमुख जी। आत्माराम पाटिल जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आत्माराम पाटिल जी। सर्वजीत सेठी जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वजीत सेठी जी फाजिलका पंजाब वाले। बबीता जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बबीता जी। और अगर गाने की डिमांड है तो कौन सा गाना है जरूर मुझे बताइएगा। और फिलहाल यहाँ पे सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी सुनील कुमार जी। और सुनीता गोपी साइकिला झारखंड से हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, वालेकुम सलाम। और आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आरिफ सिंधी जी, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और जुड़ने वाले हैं निशांत राय बोले जी, आपका भी वेलकम है। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं काजल झक्का जी। और राजेश कुमार जी ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, आज क्या बात है, आज तो बहुत पहले जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, वालेकुम सलाम आपका भी। और मिसालंगा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और जुड़ने वाले में मुबारक हुसैन जी भाई, बहुत बहुत मतलब मुबारक हो आप जुड़ गए हैं। और शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी शिल्पा बहन जी। सर्वेश भगत जी भी हैं, तो आपका भी वेलकम करते हैं सर्वेश भगत जी। और नागेश्वर धाकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नागेश्वर धाकर जी। और रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं। और फिलहाल बता दूं कि आज हमारे रेडियो हॉटस्टार के सबसे वो लिटिल चॉम यानी के इन मैंग बाबू का जन्मदिन, तो भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के तीन धाकड़ वो श्रोताओं के साथ जिसमें है अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और सर्वेश भगत जी। इनके डिमांड के साथ मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज का थीम है स्टार म्यूजिक मस्ती, तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है खिलाड़ियों का खिलाड़ी और गाने का बोल है तू कौन है तेरा नाम है क्या।
0: जी जी।
1: ये गीत सबसे पहले आपको
0: थैंक यू सो मच
1: और आपकी सुंदरता की मूर्त को,
0: थैंक यू सो मच,
1: और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: सर्वेश भगत जी।
2: अर्जी अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है खतरों का खिलाड़ी और गाने का बोला तू कौन है तेरा नाम क्या।
0: अमन नाम है मेरा।
2: और हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंज जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्षेश्वर भगत, आनंद शेखर, इंद्र प्रकाश, सोनी कुमारी, मुनि कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आर जे वंशिका जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे सोनी जी, आर जे एम एस परमार जी, आर जे रत्ना जी, और सभी आर जे, और सभी भाई, और सभी बहन, और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा।
0: बिल्कुल आत्माराम पाटिल जी।
3: प्यारे अमन खान सर जी।
0: जी जी बोलिए जी।
3: मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिया, तहसील मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके रेडियो हॉटस्टार पर एक आपके आज के प्रोग्राम में गीत लेके आया हूँ सर।
0: ओके जी।
3: मूवी का नाम है खिलाड़ियों का खिलाड़ी और सर सिंगर है कुमार सानू और साधना सरगम जी। वैसे आर्टिस्ट है,
0: बताइए बताइए,
3: आर्टिस्ट है अक्षय कुमार और रवीना टंडन। और इस गीत को म्यूजिक दिया है अन्नू मलिक जी ने और गीत बनाया है सर इंदिवर जी ने। गीत के बोल कुछ इस प्रकार के है, कौन है तू, तेरा नाम क्या,
0: नाम का। जी जी,
3: ये गीत सुना दो।
0: ओके।
3: ये गीत सबके पहले आपको
0: थैंक यू,
3: सुंदरता की मूर्त को
0: थैंक यू सो मच, उनके लिए भी,
3: अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, सैयद जी है, यूनुस और सभी हॉटस्टार सुनने वाले को सुना दो। मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: के बच्चे।
1: बिल्कुल, हम तो सीधे साधे अमन है भाई, क्या कहना है। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि ओके, और यहाँ पे फीडबैक।
2: अरजय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: हमारा तीन भाई का फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए। हमारा अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज अजय भगत जी का लड़का का जन्मदिन है
1: जी। जी,
2: मयंक जी का बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। ईश्वर उनको खूब खुश रखे, आबाद रखे, यही ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं।
1: धन्यवाद।
2: खूब बाप माँ का नाम रोशन करे। और धन्यवाद सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और मेरे पास फीडबैक है, बागेश्वर निषाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बागेश्वर निषाद जी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं, धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये उनका अंदाज है, वैसे मैं गया हूँ अभी। और ब्रजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है ब्रजेश कुमार जी। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं, सुपर सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं सभी को। और नंदलाल यादव जी गाजीपुर यूपी से जुड़ चुके हैं और लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी ये का इन ग्रुप डिमांड बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और ये फिर देख भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
3: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, तीनों दोस्तों की मिली जुली फरमाइश बहुत ही शानदार हमें सुनवाने के लिए तीनों दोस्तों का शुक्रिया। और अमन सर जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, आपने प्ले करके हमको सुनवाया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
1: धन्यवाद। और आत्माराम पाटिल जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
4: वाह अमन सर जी, शुक्रिया तहे दिल से आपका, आपने हमारे तीनों भाई का गीत सुनवा दिया, बिल्कुल दिल खुश हो गया, शुक्रिया। मैं आत्माराम पाटिल लिया बुलढाणा महाराष्ट्र से।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आत्माराम पाटिल जी। साथ ही साथ यहाँ शिल्पा बहन लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना लगा है मुझे, सीधे साधे अमन जी। ओके, निशांत जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और हुकुम चंद जांगड़ जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम है। अगला जो डिमांड है राजेश कुमार जी का है, राजेश कुमार जी सुनना चाहते हैं मस्त बहारों का मैं आशिक। बिल्कुल, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे वो कली के साहिब में खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, क्योंकि सारा जहां है मेरे लिए सिर्फ।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे।

0: बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए।
1: बिल्कुल सारा जहां है मेरे लिए, जो चाहे मैं करूं भाई। वैसे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं, राजेश कुमार लिखते हैं कि थैंक यू मिस्टर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और ये क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
2: जय अमर सर जी, राजेश कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं। और आज अक्षय कुमार जी का जन्मदिन था, इसलिए ये गाना चॉइस किया गया था। अच्छा, हम लोग का ग्रुप का। थैंक यू सर।
1: तो अक्षय कुमार जी का जन्मदिन है, और शायद अक्षय कुमार जी हमारे रेडियो हॉट एफएम पर यानी के बतौर मेहमान हाल फिलहाल आए थे या नहीं, अब तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मेरा बड़ा कंफ्यूजन है भाई कि मैं इस परेशान ऑफ द वीक में किसको लाऊं, आशा भोसले जी को लाऊं कि अक्षय कुमार जी को लाऊं कि फिर किसी और को देखना पड़ेगा मुझे फिलहाल। यहाँ पे ब्रजेश कुमार जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है, मजा आ गया सुनकर। नंदलाल जी लिखते हैं कि राजेश कुमार जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस लाजवाब गाने के लिए। पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और निशांत राय वो लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके, अगला जो डिमांड है हम भाई शाम को चमकाते हैं, MD यानी कि ताहिर जी यानी बढ़ापुर इग्नोर से सुना चाहते हैं फिल्म यादें का लाजवाब गाना, चमकती शाम है। इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। वैसे गाना बहुत ही प्यारा है भाई, क्या करें, सभी गाने से बढ़कर है कि हम किस किस गाने को की तारीफ करें। फिलहाल फीडबैक शामिल करते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है ना।
1: अरजे अम्मा सर जी, MD ताहिर जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और अशिल्पा बहन जी लिखते हैं कि यादें फिल्म का गाना बहुत ही बढ़िया है जी, ओके जी। और राजेश कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि अमन जी आपने जिस अंदाज में मेरे गाने को पसंद की पूरी किया उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है, थोड़ा सा इसी बात पर सुनते हैं।

ये डिमांड आई है रतलाम की गलियों से। एकदम मस्त डिमांड है।

और ये हुस्न का दरिया भाई, छलका हुआ नशा भी है। फिल्म जोड़ी नंबर वन का ये लाजवाब सॉन्ग सुनिधि चौहान एंड सोनू निगम की आवाज में, म्यूजिक आनंद राज आनंद और लिरिक्स देव कोहली सुधाकर।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। निशान साहब वो लिखते हैं बहुत ही सुपरहिट गाना है, मजा आ गया सुन के। और ये फीडबैक
1: जय अमन सर जी, नागेश्वर धाकर जी अपने गाने में शामिल किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और आत्माराम जी लिखते हैं बेहतरीन सॉन्ग सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि मस्त मस्त मस्त सॉन्ग, मजा आगे सुन के। और फिलहाल यहाँ पर राजेश कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही धमाकेदार दमदार चॉइस है। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि जोड़ी नंबर वन का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। और MD फैज जी लिखते हैं कि सुपर बेस्ट गाना है। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच भाई इस गाने के लिए। अगला जो डिमांड है आमना खान जी का है, ये तो यानी कि पैसा के बारे में कुछ कह रही है, सुनते हैं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं, शामिल करता हूं मैं
1: अर्जे अमन सर जी, अमना खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा शर्मा जी। और आशीर्वाद बहन जी लिखते हैं कि ये पैसा पैसा वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और अमना खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अर्जमन जी फॉर प्लेइंग माय सॉन्ग। ओके जी, और ये फीडबैक क्या कहते हैं भाई?
2: अमन खान सर,
0: यस सर,
2: आदाब और सो, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे से प्यारे साथियों को मेरा तहे दिल से आदाब कबूल हो। सर जी,
0: जी जी,
2: एक बात बोलूं?
0: हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
2: आपकी जो मखमली आवाज है ना,
0: अच्छा,
2: इसकी कशिश से जो अजनबी भी श्रोता है ना, वो एक दूसरे के जितने करीब आ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी आवाज की बदौलत और आपकी पेशकश की बदौलत है कि एक दूसरे की फरमाइश को वे अपनी आरजू बना रहे हैं। आपका महज ये कार्यक्रम या शो कह लीजिए, गानों का दौर नहीं बल्कि बिखरे एहसासों को समेटने वाला एक ऐसा रूहानी महफिल है,
0: अच्छा,
2: जहाँ लफ्ज आपके होते हैं और पसंद उसके सुनने वालों की होती है,
0: अच्छा,
2: लेकिन वो सबकी सुनने वालों की जिस तरह से आपने एक माला में पिरो रखा है ना, उसके लिए आप काबिले तारीफ।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
2: इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि इतनी अच्छी पेशकश और उस पर आपकी ये नजाकत। तहे दिल से सलाम,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एंड बेहतरीन फीडबैक के लिए। और आमना खान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। आत्माराम जी लिखते हैं कि आमना खान जी की पसंद वेरी नाइस, अगला जो डिमांड है वह हमारे संदीप सुतार जी का है, सुनाना चाहते हैं शकीला।

और मैं तो बताना भूल गया था कि अगर जो दोस्त आज जैसे कि वो मुझे फरमाइश नहीं कर पाते हैं, मैसेज नहीं कर पा सकते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि आज वो मुझे यानी कॉल कर सकते हैं 9135841232 पे, यानी कि वो यानी जब यानी कि सॉन्ग खत्म होने वाला होगा उसके बाद ही कॉल लगाना है, नहीं तो मैं पहले अगर कॉल करेंगे तो मैं रिसीव नहीं करूँगा, लेकिन वो मुझे कॉल करके बातें कर सकते हैं और अपने गाने को भी सुन सकते हैं लाइव शो में, मुझे कॉल कर सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे आपको नंबर पे कॉल करना होगा, आपको बिल्कुल व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और फिर मेरे पास फोन आ चुका है, लेकिन सर जी आपका गाना प्ले हो चुका है और इसलिए मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर सकता। और ये फीडबैक
1: अजय अमर सर जी, संदीप तुतार जी अपने गाने में शामिल, किनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और ये ऑफर सिर्फ उन लोग के लिए है जो लोग मैसेज नहीं कर पाते हैं या सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं कर पा सकते हैं, सिर्फ उनके लिए है जिन दोस्तों का गाना प्ले हो चुका है या जो लोग मैसेज करते रहते हैं उनके लिए यह ऑफर बिल्कुल ही नहीं है। ये फीडबैक।
2: अमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए।
2: आज के प्रोग्राम में भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिल रहे हैं और जैसे आप पूरी एनर्जी के साथ गाने और प्रोग्राम को पेश करते हैं वैसे हम भी फुल एनर्जी के साथ इस प्रोग्राम का मज़ा लेते हैं और हमें बहुत आनंद आता है। मैं दीपक गायकवाड़, सिवनी मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है, अच्छा यहाँ पे फीडबैक भी है। जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। और ये फीडबैक सुनते हैं।
3: आरजे अमन सर जी, गुड इवनिंग। मैं कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ और किसी कारणवश थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट मैंने गाने का फरमाइश पहले ही कर दिया था, लेकिन वो गाना मेरा सॉन्ग लिस्ट में कहीं दिख नहीं रहा है।
0: अच्छा।
3: तो क्या हुआ है या नहीं हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे पता करें सर?
0: ओके, फिलहाल मैं कॉल उठाता हूँ। हेलो, बहुत बहुत वेलकम है आपका रेडियो हॉटस्टार के।
4: नमस्कार,
0: शुभ नाम आपका क्या है सर जी?
4: मैं ब्रह्मजीत बोल रहा हूँ जी।
0: अच्छा ब्रह्मजीत जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और कैसे हैं?
4: बस सर बढ़िया।
0: ओके, तो जी जी बोलिए बोलिए।
4: आप आपकी आवाज से बहुत खुश हूँ मैं।
0: मतलब
4: आपकी जो आवाज है, आवाज से बहुत खुश हूँ मैं।
0: अच्छा, हमारी आवाज से?
4: जी जी।
0: मतलब क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
4: मैं ये कह रहा हूँ जो आपकी आवाज है, आवाज बड़ी प्यारी लगती है।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपकी भी आवाज बहुत प्यारी है। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
4: मुझे प्रेम रोग फिल्म का गाना सुनना है।
0: कौन सा गाना?
4: अरे कुछ नहीं है बात, जब ये रोग लग जाता।
0: ओहो, मैं हूँ प्रेम रोगी।
4: जी जी जी।
0: अरे तो मैं भी तो हूँ प्रेम रोगी, क्या ही बताऊँ। फिलहाल गाना सुनवा दिया हूँ, एंजॉय कीजिए।

0: इस हालत को।
1: एक और कॉल आ रही है, उठा रहा हूँ। जी बहुत बहुत वेलकम है आपका रेडियो हॉटस्टार के मिक्स मस्ती प्रोग्राम में। शुभ नाम आपका? मोहम्मद महताब जी। अच्छा महताब जी, बहुत बहुत वेलकम है। और महताब का मतलब होता है चांद, क्या बात है।
2: जी,
1: बहुत अच्छा नाम है आपका। जी बोलिए।
2: वर्षिका के ग्रुप वर्षिका के जी को सुनता हूँ मैं। मैं तमिलनाडु से हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: और मेरी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, उसको जरा सुना दीजिए। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे।
1: साथी ना समझ
2: कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे।
1: अच्छा, कुछ ऐसा गाने हैं। मतलब गाने का बोल है, जिस पथ पे चला है ना, शायद यही गाना होगा। ओके ठीक है, मैं इस गाने को जरूर प्ले करूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल इस गाने को थोड़ा एंजॉय कीजिए, तब तक आपके गाने को मैं सुनवाता हूँ। ओके
2: ओके,
1: धन्यवाद कॉल करने के लिए।

वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और फीडबैक शामिल करने के बाद गाना प्ले करता हूँ उनका जिनका कॉल आया था। और निशांत साहब बोल लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है और बर्जेश कुमार लिखते हैं कि बेस्ट सॉन्ग सुनकर मजा आ गया सर जी। और बागेश्वर निशाज लिखते हैं कि द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी प्रेम रोग, नाइस सॉन्ग चल रहा है। और मनीषा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम मस्त चल रहा है। और फिलहाल मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि मैं हूँ प्रेम रोगी, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। फिलहाल ये गाना जिस पथ पे चला, एंजॉय कीजिए इस गाने को भी।

वेलकम वेलकम रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे शिल्पा बेंजी लिखते हैं कि ये मुझे प्रेम रोगी वाला गाना बहुत अच्छा लगा है। और जागीर जी लिखते हैं कि तेरे चेहरे में मेरा नूर होगा और फिर तू ना कभी मुझसे दूर होगा। और सच और सोच वो क्या खुशी मिलेगी जान उस पल जिस पर वो तेरी मांग में सिंदूर मेरे नाम का होगा। वाह क्या बात है। और सरफराज पटेल सॉरी सरफराज जी यानी बुलंद शहर वाले जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत वेलकम है ज्योति जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है ज्योति खटवाड़े जी। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है। थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए। अगला जो डिमांड है वो यानी कि मृणालिनी जी का है और वो स्पेशली डेडिकेट की है आरजे सोनी जी को। तो बताओ जान तू कहाँ रह लूँ। इन्जॉय कीजिए इस गाने को।

0: और एक और कॉल आ रही है जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। हेलो जी।
1: जी हाँ जी सर,
0: आपका शुभ नाम।
1: हाँ जी सर, मुझको गाना सुनना है।
0: अरे नाम तो बताइए पहले अपना।
1: अंकुश।
0: अंकुश जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं प्लीज बता दीजिए।
1: जेवर से।
0: जी
1: जेवर। जेवर
0: जेवर, ये मतलब कहाँ पड़ता है? धन्यवाद फोन करने के लिए। तो आप इन्हें कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे बता दीजिए।
1: जाने चले जाते हैं कहाँ।
0: जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले। भाई इतना सैड सॉन्ग, इतना सैड सॉन्ग सुनिएगा अभी अभी, रोमांटिक मूड चल रहा है।
1: हाँ जी सर, इसको सुना दो।
0: ओके
1: इसको सुना दो।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपके लिए गाना, लेकिन कुछ और सा गाना बताते तो थोड़ा सा अच्छा लगता।
1: नहीं सर, गाना यही बढ़िया है
0: आज। अरे मुझे पता है गाना बढ़िया है जी, हम कहाँ करें, खराब गाना थोड़े होता है, सभी गाने अच्छे होते हैं। हाँ अभी मूड थोड़ा सा कुछ धमाकेदार चल रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था, समझे ना
1: जी सर। हमें जब कॉल करिए, हमको यही गाना सुनना।
0: हाँ बाबा, हम आपको यही गाना सुना हमारे फिलहाल। इस गाने को थोड़ा इंजॉय कीजिए। ओके धन्यवाद।

0: वेलकम बैक। लेकिन मैं एक सबसे आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह के हिसाब से जिस हिसाब से थीम चल रहा है उस हिसाब से गाने अगर आप लोग यानी कि सुनवाएंगे तो मुझे भी सुनाने में बिल्कुल आएगा मज़ा, क्योंकि अब एक ही बार कुछ और चल रहा है और उसी बीच में कोई ऐसा गाना लगवा दीजिएगा तो थोड़ा सा मैं अनकम्फर्टेबल फील करूँगा, मैं प्रोग्राम को ठीक ढंग से नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो प्लीज़ इसका भी ख्याल रखें और ऐसे गाने की डिमांड करेंगे ताकि यानी कि सभी को सुनने को के लिए मतलब अच्छा लगे। फिलहाल ये फीडबैक शामिल करता हूँ मैं।
1: नमस्कार आदरणीय अमन सर जी।
0: नमस्कार।
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग।
1: मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
0: वेलकम जी।
1: इस लाइव कार्यक्रम में मैं भी जुड़ गया हूँ सर।
0: वेलकम जी।
1: और बहुत ही सुपर से ऊपर गीत चल रहा है सर, मैं सुन रहा हूँ आरजे अमन सर जी के साथ रेडियो हॉट स्टार पर। धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे नरेंद्र इन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं कि अमन जी, नरेंद्र मिश्रा पत्रकार, ये बलरामपुर छत्तीसगढ़ से, आपके लफ्ज लिखते हैं कि आपके लफ्जों में वो जादू है जो दिल को सुकून दे जाता है। आप बोलते हैं तो लगता है जैसे कोई अपना दिल के करीब आ जाता है। आवाज आपकी सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि खामोशी में भी अब अधूरी सी लगती है। आपकी आवाज वो कानों तक नहीं सीधे दिल तक उतरती है। अमन सर जी बस यूं ही अपनी आवाज से महफिल को सजाते रहिए, हम आपके चाहने वाले हैं, यूं ही महफिल में शामिल होते रहेंगे। सभी से कहूंगा कि सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और फिलहाल राजेश कुमार जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और काजल झका जी लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ओके जी, फिलहाल बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर गाने चल रहे हैं। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत हैवी डिमांड है। अच्छा ओके ओके। और ज्योति खंडवाड़ी जी लिखते हैं कि वह क्या प्रोग्राम चल रहा है, कॉल आ रहा है और जब आप बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो दोनों यहाँ पे आज मैंने इस दिन के लिए मैं यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ। फिलहाल मैं गाना प्ले करूँगा किनका, ओह माय गॉड, अभी तो ये गाना डाउनलोड नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, अगला मैं गाना, तब तक मैं इन्हें प्ले करता हूँ। ये मैं गाना प्ले करूँगा इन ब्रजेश कुमार जी का, सुनना चाहते हैं ये जो हल्का हल्का शुरू है। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल, ये जो हल्का हल्का शुरू है, वैसे गाना मेरे पास मतलब अच्छा था, फीडबैक भी आए हुए हैं। जागीर खान जी लिखते हैं कि हंसते रहो आप हमें हजारों के बीच, जैसे फूल खिलते बहारों के बीच, और रोशन हो आप इस तरह से दुनिया में जैसे होता है चांद सितारों के बीच। वाह वाह क्या बात है। और फीडबैक
1: जी अमन सर जी, ब्रजेश कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका, और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: बहुत ही सुंदर डिमांड थी ये, और ये गाना बहुत अच्छा लगा। और अमन सर जी,
0: जी।
2: कुछ अर्ज किया है हमने।
0: हाँ, बोलिए बोलिए,
2: गौर फरमाइएगा।
0: हाँ, हाँ, फरमा रहे
2: कि जाने किस गलती की सजा हम पा रहे हैं।
0: अच्छा,
2: जाने किस गलती की सजा हम पा रहे हैं।
0: हाँ।
2: और पता नहीं क्यों दो चार दिन से अमन भैया मेरे गाने को सबसे लास्ट में बजा रहे हैं।
0: गाना ही ऐसा भेज रहे हैं, मैं क्या करूँ।

वेलकम बैक ऑन रेडियो ओडिशा। जो दीवाना मैंने अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ आप सबकी, वो चहेती और इन प्यारी आरजे इन भोजपुरिया महारानी आरजे सोनी जी का। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम है रेडियो हॉटेस्ट ज्योति वनम सच में ई बाय मिस्टेक से उनका से मतलब यानी कि डीजे वाला गाना आ गया रहा मतलब के मेरे कहने का मतलब कि उन्होंने डीजे वाला गाना भेज दिया था बाय मिस्टेक गलती से वैसे भेजी थी वो नॉर्मल वाला लेकिन आ गया है गलती से बाय मिस्टेक होता है हर किसी से फिलहाल ये फीडबैक सुनते हैं
1: आरजे अमन सर जी आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर
0: वेलकम जी और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं
2: वाह गजब के म्यूजिकल बम्बास्टिक गाना भाई आरजे सोनी जी के पसंद बा और बहुत अच्छा लागल ये गाना बट अगर ध्यान से सुनल जाए तो शब्द भी समझ में आवता बढ़िया गाना बा बहुत बहुत धन्यवाद
0: हमारा तो खाली म्यूजिक के समझ में आला भाई फिलहाल अगला डिमांड प्ले करता नहीं ज्योति खड़वड़े जी का एंजॉय कीजिए ज्योति जी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं।
1: जय मां सर जी, ज्योति घटवटे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी, और देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग कह रहे हैं। और राजेश कुमार लिखते हैं कि ज्योति जी के पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगी, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो किनकी है।

0: और इसी बात पे एक और गाना आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वाला। ये कहना जी सुनना चाहती है तो इनके गाने को प्ले करने के बाद ही मैं फीडबैक शामिल करने वाला हूँ, तो फिलहाल इस गाने को भी एंजॉय कीजिए।
1: सुनेंगे आप।
2: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
2: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
2: कैसे?

0: वैसे फिलहाल मैं आ चुका हूँ यानी फीडबैक लेकर, और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। और ज्योति जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना सुनवा दिया, दोस्तों का भी शुक्रिया। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि हर शख्स से उल्फत का इकरार नहीं होता है, हर चेहरे से दिल को कभी प्यार नहीं होता है, जो रूह को छू जाए वो दिल में उतर जाए, और इसका लफ्जों में इजहार नहीं होता है। ओके जी। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बेहतरीन पसंद ज्योति जी आपकी, थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए। और सर्वेश भगत जी,
1: आरजे अमर सर जी, दीपक कुमार गैसवाल जी, अपने गाने में शामिल, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं,
0: वेलकम जी,
1: थैंक यू सर।
0: और यहाँ पे बागेश्वर निशा जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और हीरा मुखिया क्या कहते हैं,
2: एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा तेरा करो गिन गिन गिन गिन इंतजार आजा पिया आई बहार। बहुत ही सुपर से ऊपर फरमाइश, पसंद करता भाई को दिल से धन्यवाद।
0: अरे भाई नहीं, आपकी
2: मैं आपका रेडियो दोस्त हीरामन खिराडे,
0: वेलकम जी आपका भी। और मंगेश दशमुख लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और दीपक कुमार गायकवाड़ लिखते हैं कि अमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ब्रजेश कुमार जी लिखते हैं कि आपका गाना तो बहुत पहले बज चुका है, कहाँ थे भाई, ये जो हल्का हल्का शुरू है वही तो प्ले हुआ था, ये फिर वह।
3: अस्सलामुअलैकुम भाई, तो आज के लिए भोजपुरी सॉन्ग का डिमांड कर रहे हैं, मुवा ओढ़नी से बांध के ना आइया।
0: अच्छा अच्छा,
3: तो इस गाने में सबसे पहले आप हैं, और आपकी प्यारी सपनों की रानी सुंदरता
0: कुमारा
3: जी, और रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के सभी आरजे और सभी सम्मानित साथीगण को सुनवा दीजिए।
0: ओके जी, एम डी फैजान जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्ट जो आपको दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और सबसे पहले तो ये
1: जयमा सर जी MD फैज आलम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि वाह वाह वाह वाह वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि MD फैज जी की डिमांड बहुत ही पहला। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, एक हमारे सरोजी सेठी जी की और राहुल पासी जी की। क्या कहते हैं राहुल जी?
2: समझ कर आसमान जमी पे उतारा होगा मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का एक टुकड़ा है।
0: अच्छा ओके, तो आप दोनों की पसंद पे सुनवा दिया ये डिमांड, एंजॉय कीजिए भाई सरोजी सेठी जी और राहुल पासी जी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो ओडिशा, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रवि मोहड़े जी। और ये फीडबैक सुनते हैं सर्वेश भगत जी के।
1: जय मोहन सर जी, सरजीत सेठी जी और राहुल पासी जी दोनों भाई मिलीजुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि सुपर सुपर लाजवाब सॉन्ग है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और निशांत है वो लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है जी। और ये फिर बैक,
2: गुड इवनिंग अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले किया इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मीना कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बाजी घर का गाना मुझे अच्छा लगता है। और एमडी सहा जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग, मजा गया मजा गया मजा गया। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है, ओके जी। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ बागेश्वर निषाद जी का, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये गाना है, और सच में ये गाना मतलब बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। और ये गाना ये है, इंजॉय कीजिए।

0: आलम। वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आए हुए मेरे पास, और सबसे पहले सर्वे स्वागत जी का,
1: आरजेएम और सर जी बागेश्वर जी अपने गाने में समय क्यों, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी, और प्रियंका जी जुड़ चुके हैं फीडबैक के साथ, वेलकम है
2: मेरे महबूब जान।

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था अमन जी, थैंक यू इतना अच्छा सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: वेलकम जी। और यहाँ पे बर्जेस कुमार लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिला, दिल बाग बाग हो गया। राहुल पाठक जी लिखते हैं कि यानी किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और शिल्पा पे लिखते हैं कि किसी मेहरबान ने, बहुत ही बढ़िया गाना है। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही अच्छा है, धन्यवाद देते हैं और फीडबैक सुनते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने हमारा गीत चलाया और जिन्होंने हमारे गान पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए होशियार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: धन्यवाद देते हैं। और हीरामन जी क्या कहते हैं?
3: आदरणीय अमन सर जी,
1: जी जी,
3: बागेश्वर जी का गीत बहुत ही सुपर से ऊपर, और मेरे साथ मेरे परम मित्र अमोल कांबड़े जी पुणे महाराष्ट्र से चुप चुप के अपना रेडियो हॉटस्टार का कार्यक्रम सुन रहे हैं। सर, रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे आरजे अमन सर जी के साथ, धन्यवाद। मैं आपका रेडियो दोस्त हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
1: ओके जी। और अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ काजल झक्का जी का, ये सुनना चाहती है और सभी को डेडिकेट करना चाहती है, स्पेशली एंजॉय की।

0: बिल्कुल, जब दिल के धड़कन में केहू बस जाला हो, मतलब जब कोई दिल में समा जाता है सच में। ये फिर
1: अरजय अमन सर जी, काजल झा जी, बहन जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और ये फिर सुनते हैं।

0: जब दिल के धड़कन में केहू बस जाला हो। सुपर फरमाइश, सुपर सॉन्ग।
1: जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे बागेश्वर निशा जी लेते हैं कि थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये फिर भी सुनते हैं
2: अमन जी। एक सॉन्ग था जो कि कायना जी ने सुनने का रिक्वेस्ट किया था, जो कि मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहती
1: हूँ।
2: दिन बने हफ्ते में, हफ्ते महीने, महीने बन गए साल।
1: अच्छा, अच्छा।
2: आके जरा तू देख तो ले क्या हुआ है मेरा।
1: अरे बिल्कुल चंगी बनी तो हो।
2: दीवानी दर दर में फिरती हूँ, ना जीती हूँ ना मैं मरती हूँ, तन्हाई की रातें सहती हूँ।
1: अच्छा।
2: आजा आजा आजा आजा आजा
1: कोनो जरूरत
2: नहीं आजा के दिन दिन के रहती हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह,
1: बिल्कुल आगे भी गिनते रहिए। ओके, और यहाँ पे राहुल पासी जी लेते हैं कि गाना सच में काजल झका जी का बहुत ही प्यारा सा। अगला जो डिमांड है वो हमारे शाहिद अंसारी जी का है। शाहिद अंसारी जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। पहले तो ये
1: जय अमन सर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है और मजा आ रहा है, ये फीडबैक सुनते हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है नंदलाल यादव जी का है, सुनना चाहते हैं थोड़ा सा हेड जी। ये गाना मैंने इससे पहले भी सुना है लेकिन गाना बहुत ही प्यारा है, सुनिए आप भी, इंजॉय कीजिए। बहुत ही टाइट डिमांड है ये।

0: नंदलाल जी सच में भले ही गाना मैंने कितना बार भी सुना हो लेकिन गाना की ये इतना प्यारा है ना कि मैं क्या बताऊं। आपको भी बनाता हूं आज के सॉन्ग ऑफ द डे के विनर। ओ माय गॉड। और हमारे यानी कि प्रमोद जी तो गायब हो गए, पता नहीं आजकल वो कहां रह रहे हैं। तो ये दो दोस्त हो चुके हैं शाहिद जी और नंदलाल जी। अगला गाना भी वैसा ही कुछ है लेकिन फिलहाल फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं फीडबैक को पहले। और मनीषा जी लिखते हैं कि जो यानी कम वो तो यानी कि मजा आ जा रहा है सच में। ओ थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: जय मनसा जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और सच में ये गाना दिल को छूने वाला था ना। और आमना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और काजल झका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रजेश कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है। जी सर, जी जी बिल्कुल मुझे पता है। और एम डी सोहेल जी लिखते हैं कि मजेदार गाना है। जी बिल्कुल, ओ अगला जो गाना है मैं डाउनलोड कर रहा हूँ यार, पता नहीं 51 पर अटका हुआ है। कोई बात नहीं, मैं इसी गाने को अभी मैं इन्हें प्ले करने वाला था लेकिन फिलहाल में एक काम करते हैं, एक भोजपुरी गाना है अभी यहाँ पे मैं इन्हें प्ले करता हूँ, वो है सुनीता गोप जी का। और सुनीता गोप जी सुनवाना चाहती हैं ये मेहंदी के रंग वाला। इंजॉय कीजिए।

और अगला जो गाना आने वाला है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार डिमांड है, क्योंकि इन महक जी आती हैं तो पूरा हॉट स्टार को महका के जाती हैं, बहुत ही प्यारा डिमांड लेके आती हैं वो, और जब भी आती हैं तो

0: वेलकम वेलकम रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे राहुल पाची जी लिखते हैं नंदलाल जी के पसंद। ओ माय गॉड बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और सर्वेश भगत जी
1: आरजे अमन सर जी सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और दाता जी देते हैं कि नमस्कार अमन सर जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी
2: अमन जी नंदलाल जी की पसंद का गाना बहुत ही बढ़िया लगा, और बाद में फिर आप ये कार्यक्रम के बीच में जो भोजपुरी तड़का लगा देते हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है बिल्कुल सुनने में, बहुत बढ़िया शानदार। दीपा गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और मीना कुमार जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना बहुत अच्छा लगा है। वैसे अगला जो डिमांड जैसे कि मैंने कहा कि वो महक जी का है, और महक जी थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग, एंजॉय कीजिए। और गाना सच में बहुत प्यारा है।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार। जो दीवाना बनाते फिर है, मैं बाद में फीडबैक शामिल करूंगा। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूं उसके बाद, और ये डिमांड लाई है मनीषा शर्मा जी। इंजॉय कीजिए।

0: फिलहाल फीडबैक में पसे हैं सर्वेश भगत जी, क्या कहते हैं?
1: अर्जय अमान सर जी, मांग जी अपने गाने में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे मनीषा जी लिखती हैं कि ये जो महक जी का जो गाना था वो मैंने पहली बार सुना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, उनको थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। अगला जो डिमांड मेरे पास दिख रहा है वो इन पूजा भास्कर जी का है, सुनना चाहते हैं, इन प्यार करते हो ना, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: चलो अब सच बता दो कि प्यार करते हो ना वैसे फीडबैक में। मैं ऐसा है महिषा शर्मा लिख देंगे थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और दत्ता जी लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। और हीरामन जी क्या कहते हैं सुनते हैं इनकी।
1: आदरणीय अमन सर जी,
0: जी
1: पूजा भास्कर जी की पसंद बहुत ही लाजवाब और गीत में याद रखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपका रेडियो दोस्त हीरामन किराड़े वाशिम महाराष्ट्र से, और मेरी फरमाइश आपके पास पहुंच गई क्या नहीं सर जी, प्लीज बता देना। मैं सुन रहा हूँ रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे आरजे अमन सर जी के साथ।
0: बिल्कुल, आप लोग की तो रिक्वेस्ट आई हुई है, लेकिन मेरे पास अगर समय मिलेगा तभी प्ले कर पाऊंगा ये गाना।
2: अमन भैया गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से। तो आज के कार्यक्रम में मेरी फरमाइश रहेगी, फिल्म का नाम है निरहुआ रिक्शा वाला, और ये गाना इसके गाने के बोल हैं कि चांद जैसन चेहरा तो हर दिल हमार ले गई। इस गाने में पहले तो आपको शामिल करूँगा और आपकी सुंदरता की मूरत को वंशिका जी, आकांक्षा जी, सोनी जी और रत्ना जी, इनके साथ साथ सोनू गौतम जी हैं, प्रिंस पासवान जी हैं और परवेज अहमद जी हैं और सतीश शर्मा जी, मुक्तिनाथ जी नेपाल से, अरुण मंडल जी, नेकलस जी, जेठालाल जी और एम ताहिर जी, इन सबों के साथ साथ रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा गाना डेडिकेट रहेगा, धन्यवाद।
0: वेलकम जी, और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं हमारे रबी मोहड़े साहब जी। तो आप दोनों की पसंद एक ही है तो सुनवाता हूँ आप दोनों की पसंद का ये बहुत ही प्यारा नगमा जो मुझे बेहद पसंद है। ये इंजॉय कीजिए कि चांद जैसन तुहार यानी कि चेहरा तुहार दिल हमार ले गई। इंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और बागेश्वर निषाद जी देते हैं। गाना तो बहुत ही बढ़िया है जी, बिल्कुल। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो किनका है बताता हूँ।

0: एंड मैं सुना रहा हूँ आपको, यानी कि शिवम जी के पसंद का, एंजॉय कीजिए उनके गाने को।
1: दिल बेकरार हो जाता है जब तुम नहीं मिलते, रोज मिला करो। तुम नहीं मिलते तो मेरे दिल के गुलिस्तान में फूल नहीं खिलते, रोज मिला करो।

और अब मैं धीरे धीरे फीडबैक यहाँ से यानी कि कम करने वाला हूँ, मतलब फीडबैक मैं नहीं शामिल कर पाऊंगा, इसीलिए अब मैं यहाँ से सीधे गाना प्ले करने वाला काम करने वाला हूँ। हुकुमचंद जी, अगला गाना आप ही का मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। हुकुमचंद जांगड़ जी।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और हाँ, जिनका गाना प्ले होगा वो अगर फीडबैक यानी कि दे सकते हैं। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो यानी कि मिसाल अंगद जी का है। मिसाल अंगद जी, तो सुनवाते हैं हम आपके गाने को, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और आमना खान जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम तो शानदार है, मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया। अच्छा, और जाकिर खान जी लिखते हैं कि यानी कि कोई नहीं है रेडियो हॉटस्टार जैसा। अच्छा, ऐसा है क्या? फिलहाल

0: बिल्कुल दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। वैसे मंगेश दसमुख जी के अर्जा मंजिल का प्रोग्राम बहुत ही शानदार हुआ है, सभी गाने एक से बढ़कर एक चले हैं। और विष्णु जी अभी आए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। मीना कुमार जी देते हैं कि ओके, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: अमन जी आपने मुझे विश नहीं की।
0: अरे सबसे पहले ही आपको मैंने ये निवेश किया था, कहाँ थे आपने, नहीं सुना होगा। बागेश्वर निशा लिखते हैं कि दिल तो पागल है, गाना बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड में प्ले

और भाई यानी कि अनिल कश्यप जी, मैं आपके गाने को प्ले नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए हम सॉरी, क्योंकि आपने ऐसा गाना भेजा है कि जो मैं नहीं प्ले कर सकता। आप गाना चेंज कर सकते हैं तो मैं जरूर प्ले करने की कोशिश करूंगा। ओके।

बिल्कुल, और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि अनसुना गाना है ये, बिल्कुल हाँ। और इन मैंग बाबू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था भाई, पैसा जुड़ कर सुन रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि आज के सभी दोस्तों की फरमाइश से बढ़ के एक लगी है, थैंक यू सो मच। और ओके, और दत्ता जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है। अगली जो पसंद है वो यानी मीना जी की है, और मीना जी सुनना चाहती हैं कौन सा गाना। ओके जी, तो ये मैं गाना उनको सुनवा रहा हूँ। मेरा पहला, ओके, एंजॉय कीजिए।

मेरी जिंदगी है तू सच में। और मंगेश दस मुझे देते हैं कि आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे प्ले हो रहे हैं। बागेश्वर निशा जी देते हैं, अमन जी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपका भी। और कविता कुमारी जी जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से, बहुत बहुत वेलकम है कविता कुमारी जी आपका भी। और आपने कौन सा गाना भेजा है, वो लिखा है सिर्फ दिल जलाए गाना, तो दिल जलाए में तो बहुत सारे गाने हैं, मैं कौन सा गाना प्ले करूँगा आपके लिए, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मीना कुमारी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाने को प्ले करने के लिए। और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि जुबिन नोटियाल की आवाज़ में ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ओके ओके, और यहाँ पे लिखते हैं कि यानी कि कुछ कुछ जो यानी नए नए गाने हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। आजकल के सभी गाने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं। शिल्पा भी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया गाना था मेरी जिंदगी है तू, मज़ा आ गया सुन के इस गाने को। जाकिर खान लिखते हैं कि शुक्रिया अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है, जरा सा देख लेता हूँ मैं, वो मैं प्ले करने वाला हूँ यानी प्रियंका जी का कभी तो नजर मिलाओ, इंजॉय कीजिए। और इसी में एक और गाना है लिफ्ट करा दे, वो भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा सुनवाऊंगा जरूर।

0: अच्छा
1: कभी दिल से दिल मिला हम भी तो है तुम्हारे।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वेलकम जी। फिलहाल आपने अच्छा गाया है और यहाँ पे खुशबू जी लिखती हैं कि ये प्रियंका जी की पसंद बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे ओके बिल्कुल हो जाएगा। और बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही प्यारा लगा है अदनान साहब की आवाज़ में। और ये मीना कुमार जी लिखते हैं कि ये सच में सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना को फीडबैक देने के लिए। शिल्पा पे लिखते हैं कि कभी तो नजर मिलाओ गाना बहुत अच्छा है, थोड़ा सा गाना मैं सुनवाता हूँ लिफ्ट करा दे, एंजॉय कीजिए।

0: मेरे को लिफ्ट करा दे यार। और जाकिर जी लिखते हैं कि हम दिल फेक आशिक हर काम में कवार कर दे, जो वादा करे वो पूरा हर हाल में कर दे, और क्या जरूरत है जानू को लिपस्टिक लगाने की, हम तो चुम चुम के होठ ला कर। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये फीडबैक।
1: अमन सर जी, आज का प्रोग्राम शानदार रहा।
0: थैंक यू सो मच।
1: एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिल रहे, शुक्रिया अमन सर जी। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए भाई। जाकिर जी आपने तो हंसा दिया मुझे। शिल्पा बहन लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना था, मजा आ गया सुन के। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्ती वाला गाना सुनने को मिला है। अगला जो डिमांड है हमारे धनेश कुमारी मिश्रा जी का सुनवा रहे हैं, इंजॉय कीजिए दिल्ली से।

0: जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये गड़बड़ हो गई है। और ये सुनना चाहते हैं राधे जी, इंजॉय कीजिए। गड़बड़ हो गई
1: छुट्टी हो गई

0: जान बचाओ,
1: पी जाओ।
2: और देखता हूँ कि आज यानी लीडर बोर्ड में मैं किसका लॉटरी निकालने वाला हूँ और किनका नाम आने वाला है।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे दीपक जी देखते हैं कि अमन जी, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, रेडियो होटल के धुन दिल में तो और भाती जाती है, चांदनी के भी इन नगमों में खो जाती है और धड़कन तो बस रेडियो होटल के साथ गुनगुनाती है। ओहो क्या बात है। और अगला जो डिमांड है आरिफ सिंधी जी का,
1: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी।
0: जी
1: मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से।
0: वेलकम जी।
1: आज की मिक्स मस्ती में गाने के बोल रहेंगे, आज उनसे मिलना है हमें। फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो। आवाज़ें दी है शान ने, डेडिकेट रहेगा अमन सर जी आपको।
0: थैंक यू।
1: आपकी सुंदरता की मूरत जी को,
0: उनके लिए स्पेशल दिल से।
1: आरजे वंशिका जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे आकंसा जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे सोनी जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को।
0: ओके
1: मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, शुक्रिया।
0: एंजॉय कीजिए।

0: और मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है यानी काजू कतली, तो वो तो मैं जरूर लेके जाऊंगा।
1: मिलना है हमें
0: और सबसे ज्यादा यानी काजू कतली ही रहेगा।

0: न जाना है।
1: वेलकम बैक, फीडबैक मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं, शामिल करता हूं मैं।
2: शुक्रिया अमन सर जी, मेरी डिमांड का गाना प्ले करके मुझे सुनवाने के लिए, और जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
1: वेलकम जी आपका भी, और यानी विजय राज जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार सॉन्ग है सर जी, और नमस्कार मैं भी आ गया हूँ, और सभी साथियों को और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले मेरे मतलब इन सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और कौन कहता कि हम उसके बिना मर जाएंगे, हम तो दरिया है समुन्दर में उतर जाएंगे, और वो तो यानी तरस जाएंगे इन प्यार की एक बूंद के लिए, हम तो बादल हैं और इन प्यार बन के बरस जाएंगे। अगला जो डिमांड है हीरामन खिलाड़ी जी का, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं। यहाँ पे शिल्पा व्यंजी लिखते हैं कि ये गड़बड़ हो गई वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे फीडबैक है, ये सुनते हैं। यानी प्रियंका जी क्या कहती हैं?
1: अमन जी, अभी जो सॉन्ग सुनाया था कि आज हमें उनसे मिलना है, हमें थोड़ा काजू किशमिश ले चले, उसका ये जवाब है कि जिनकी चाहत में अखियां तरसी
0: है,
1: जिनसे मिलने को बरसों बरसी है, होने वाला उनका दीदार है, उनको भी मेरा इंतजार
0: है। क्या बात है।
1: तो वो सॉन्ग और ये सॉन्ग मिक्स करके बताया गया है।
0: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मैंग जी को जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला जो डिमांड है वो मैं दो दोस्तों की है कि मंगेश देशमुख जी का है, और मंगेश देशमुख जी के साथ साथ उनके दोस्त जो है क्या नाम है, निशांत राय बोले जी, दोनों की एक ही डिमांड है, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे। एंजॉय द ट्रैक और इस गाने के बाद आते हैं।

बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। वैसे यहाँ पे मंगेश दसमुख जी लिखते हैं और जयमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, बहुत ही सुपरहिट लाजवाब गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि दिल तो खोया है गाना मुझे हॉट स्टार पर, अच्छा धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो ये शिल्पा बहन जी का प्ले करता हूँ, इंजॉय कीजिए शिल्पा बहन जी।

अगर आपका ऐप अपडेट होगा तो मैं जरूर कॉल कर लूंगा आपको। और एक साहब यहाँ पे लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार स्टार मैसेंजर हूँ मैं, और खत लिखते सुमरिया के नाम, बाबू गाना सुनना है, लेकिन यानी कि गेस कीजिए कि मैं कौन हूँ। भाई मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि आप कौन हो? भाई मैं इतना इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं कि मैं आपको पहचान सकूँ कि आप कौन हो। वैसे इस गाने की मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड करती थी आरजे यानी रत्ना जी, अब उसके अलावा अब और कौन कर सकता है मुझे तो नहीं पता है। खत लिख दे समरिया के नाम है बाबू, तो देखते हैं, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

जी मैंने सब कुछ लिख दिया, आप मेरा इनाम दे दीजिए प्लीज। और यहाँ विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और आशीर्वाद बहन जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद और फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है मैं प्ले कर रहा हूँ सरफराज खान जी का, ये सुनना चाहते हैं हमका इश्क हुआ हम रो।

0: तू मेरी गल मान जाए, तू मेरी गल मान जा मान जा।
1: ओके जी, अगला जो डिमांड है हमारे दत्तक करम जी का है, सुनवाते हैं दत्तक करम जी, एंजॉय कीजिए।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

Mm-hmm.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो मुझे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

की धार।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.